बढ़ के एक खिलाड़ी, लाल कुल्हाड़ी, काली पहाड़ी, मोटा सेठ, लोहे का गेट, हो गई भोर, भागा चोर, नाचा मोर, मच गया शोर।

के फैंस उसे आधा रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं। देता कुछ।

0: Your life, your music, your 89.1 FM, NTN Radio.
1: तेरा जहर बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त।
2: लाले क्या बताऊं यार, वो जिस जमीन पे पैर रखती है वो जमीन महकने लगती है, और अगर वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दे तो ये कुदरत महकने लगती है।